0: जूते के इन नोया के फ्यूचर एक प्लस पॉइंट है काक आरडीबी यूथ प्लस विशेष प्रतिलाभ रसाक समगिंग यूथ एक नमस्ते ट्वेन बैंकिंग पार्टनर आरडीबी यूथ प्लस की नुमा ओबव विनुएन मा
1: David Peel's Motor Company within Rajya Sevaka Upadapidana DPMC Rajya Pranama Amatanna Binduai Ekai Ekai Hatarai Hatsiyai Hayasiyaya
2: Lakkana Sitanimana Budupana Sitanimana Budupana
3: Satyantaye Ratri Sumadhura Dharmadeshanaya Sinasurata Ratri Naveta